0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026। सुबह के 5:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है सुबह के 5:56। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ठीक 6 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। छह 6:05 पर कार्यक्रम सुप्रभात लेकर आपके साथ रहेंगी नुपुर। 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 7:05 पर का समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, लेकर हाजिर होंगे निखिल कुमार। 8 बजे समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR नुपुर के साथ। 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने, लेकर हाजिर होंगे निखिल कुमार। 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का, लेकर प्रोग्राम में रहेंगी निहारिका। 11 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 11:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का, प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी कंचन। 12 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का। 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक के साथ आपके प्रोग्राम को लेकर आपके साथ रहेंगी निहारिका। 1 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में नई सरकार

0: जीतने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल है। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं एसबी त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है अर्जुन शर्मा।
0: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज

0: जबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम

यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 103 megahertz.
1: Hello, namaste, and a very good morning to all our beautiful PR listeners. I'm Yan Sabke Swagat Kwezi, and I'm Gajwane FM track when exotin megahertz day. And it is a, where's the Ajarangti, our program, I say, well, hit songs in the film can program day. To Ami can get Kando Honibo, our parada kami hit kids to Bajai Diola say, our to time dia ko apni kan bi bhal bhal bhapna anthagi shi uli do feedback thoughts suggestions nuliwa apni an kunoba ki good morning wish kuru munja ase or not just kunoba but all the listeners apni an ito bi likhina bhai diyo parebo aro ito program de iti abra logi na says na kredak ami kan logot shamil di thagi bi kuna ago mang kure ase तो हाँ जी लिसनर जामने हाँ ना जी भोजोर दिन तो भाली जैसे ना मुला भावना से यदि कोई मजी तो बारिश भी पड़े से और दिन तो इमान मस्ती तो नहीं है होली भी कि गो ना कि जब तो सनी दिन बावो कि जब क्लाउडी दिन बावो मौसम तो निकाल से बट अमी लोगों ते ऐसे यदि प्लेलिस्ट तो आ रहे तो लोग अमी हाँ जुड़ी था कि वो आ रखो ती होली भी गेट दिन की मौसम लोग पाए ली भी तो गेट खान बड़ा को अपनी खान लगा दिन तो भाल करी ती वो को ना मिला भावना से तो यदि अमी बजाय दिया से बोला गेट ऐसे जेंटलमैन ला मूवी बढ़िया से आरोग्य ला नमस्ते लगे ना छोड़े अरिजीत सिंह आरोशिया कौशल लगा वास्ते

हाँ जी, बेलस नजम निगानी दिया होने ले हाफ गर्ल फ्रेंड लगा मूवी बड़ा दिया उसे बेर भी डूम को जाऊंगा। अरिजीत सिंह और शशि चट्टोपाध्याय लगा आवाज दे। अरे यदि आपने अल्लाह की सुमन मैसेजेस काम भी आई ना से तो मुझे लोग ना पूरी दिया से कुनो बा। अरे यदि कोई दिया से ओके लेट्स सी। गुड मॉर्निंग मैम, आज लगा गाना हाँ तो बिशी बाला से आरो देशी बारिश। ओके दिस इज चंद्र दिमोंग देहरोन बाहे आरो विकास ग्रामसा तहान भी सारे हजन का भी आंग लोंग बार लिखे से तो हाँ जी आपने आप सब के स्वागत कर ऐसे प्रोग्राम दे एंड गाना गान होनी ना खुशी बैसे को तो पिछे खुशी ऐसे आरो कोई निश ना आज ला दिन तो इन्हीं का अमी खान लगा वेदर प्रिडिकमेंट भी दिखाया से यदि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का बड़ा कि आज ला दिन तो ये तो मौसम तो बारिश तो दी था कि वो निश ना से गुना तो आपने हम भी तो होशियार गुना था कि भी। All right, team from Lakuti says good morning to you. Thank God for giving us this new life. Team, as always, Zamnikan, inigal morombra mita message likena batai dia do bishi kushi ase. Agu apni bi jori nasi na jani na bishi kushi ase. Let's hope Sisila bi itia jori na thagi woguna. And yes, Sisila, if you are there, please to write to us. We'd love to hear from you. So itu ase amni kan laga messages kan tu aku kuno bahi ase oleh ami jadi gate kan kuno apa jadi dia apa aru itu pas dia aku amni kan laga messages kan tu ahi nalu dia apa tu jadi next gate apa jadi dia ase mana aku ase Badrinath ke Dulhania laga movie berdia ase rokena rokena Arijit Singh laga waste.

हाँ जी बेलसनस आप यानी दिया होने था कि वो 10:20 टिवला से वर्ल्ड न्यूज अंग्रेजी दे 10:30 था कि वो आज बस दे आज जस्ट चॉइस वेस्टर्न म्यूजिक 10:30 यानी टिवला से

0: FM 103 MHz.
1: हाँ जी बेल लिसनर्स दिया समय दिया से रियल टाइम देखो मैं ट्रैफिक लगा जानकारी और यदि कोई दिया से रेफरेंस करने नॉर्थ बाउंड खुले तो नॉर्थ नी चला ट्रैफिक डायरेक्शन से और साउथ बाउंड तो साउथ नी आए लगा ट्रैफिक डायरेक्शन कोई दिया से तो मंगलवार पीएचक्यू जंक्शन मजदूर से गुले नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन दिए

हाँ जी लवली जिद्या गीत बजे दे से कुछ तुम गाहो कुछ हम कहेला मूवी बड़ा जब से देखा गीला नाम से आवाज शिशु कुमार सानो एंड अलका याग्निक अरे तो गीत तो यदि मांगुना लिखिया से भाईकन मोंडा जराई दियो सुनारी असाम्रा आरो दाई तो गीत तो डेडिकेट कर दिया से यदि खूब नाम लिखना से लेट्स सी दुर्गेश नागनबुरी रूपाली मुंडा माइनो उराबा Niharika Tanti, Buja Urang, Ramesh Batra, Ronu Batra, Jogendra Rongbi, Chupage Jamir, Amul Basumatri, Bimal Basumatri, Anjali Basumatri, Sigari Rongfer, Fagu Urang, Gulumoni Bora, Sabina Begum, Jandra Dimong, Henrika Dimong Bi, Tahansop ki dedicate kore de ase, to mula Biswas ase ki apne listeners ka amna sadikan bi to huni ase aro likhina batai de ne mile bishi kushi ase.

हाँ जी लवलीज इडिया गेट बजाय दिया से यदि वो लाम इलाका मूवी पर दिया से गेला नाम से गया मुझे प्यार है के इलाका वास्ते आर टू गेट टू मांगुना लिखे से लिवी सो फ्रॉम लाजमी लिवी सो अपनी भी होने से गोले बेसि खुशी वाई टू गेट अपनी निमित्त बजाय दिया से आगे होनी ना खुशी पर मस्ती करी गुना मांगुरे से

हाँ जी प्यार लिसनर्स, अगर दूसरा रिक्वेस्ट न लगे दे यदि हम कहीं ट्राफिक लगा जानकारी रियल टाइम दिया से और तो जना दिया से तिहारे नॉर्थ बाउंड को लेटो तो नॉर्थ फिनी जला ट्राफिक डायरेक्शन आसे हेड टुवर्ड्स हाई स्कूल एरिया और साउथ बाउंड ले साउथ फिनी आहे लगा ट्राफिक डायरेक्शन हेड टुवर्ड्स बीओसी एंड न्यू मिनिस्टर सील मंगला और पी एच क्यू जंक्शन मजदे आसे कले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड भी ट्राफिक तो मॉडरेटली देखा आसे और अलग रास्ता लो मन जाए ओल्ड मिनिस्टर सील टू जेल कलोनी तो रास्ता लो पारे पी एच क्यू जंक्शन और मेजर जंक्शन मजदे आसे कले नॉर्थ बांगला डायरेक्शन दिए ट्राफिक तो मॉडरेटली आसे हले भी साउथ बांगला डायरेक्शन दिए ट्राफिक हेवी आसे अलग रास्ता लो गुली तो बरा मेडिकल टू टी मॉडल टू आई जी नलिबा लेडीज माइल रोड इतु रास्ता लो पारे टीसीपी आर राजू पॉइंट मजदे आसे कले नॉर्थ बाउंडला डायरेक्शन दिए ट्राफिक तो मॉडरेट आसे और इतु निशिना साउथ बाउंडला डायरेक्शन दिबी ट्राफिक तो मॉडरेट दिखाई आसे अलग रास्ता लो गले तो टीसीपी टू राजू पॉइंट नलिबा बॉक्स कटिंग टू एनएच के टू सेंसस पॉइंट नलिबा पुलबारी टू कोचोजी क्राउन टू राजू पॉइंट इतु रास्ता खान लो पारे राजू पॉइंट और सेंसस पॉइंट मजदे आसे कले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दिबी ट्राफिक तो मॉडरेट आसे और अलग रास्ता लो मुंजाली सेंसस पॉइंट टू एन एच ए के यू रास्ता लो पारे हाई स्कूल जंक्शन और सेंसस पॉइंट मजदे आसे कले नॉर्थ बाउंडला डायरेक्शन दिए ट्राफिक तो मॉडरेट आसे और साउथ बाउंडला डायरेक्शन दिए ट्राफिक तो लाइट दिखाई आसे अलग रास्ता लो मुंजाली बिलीग्राम रोड टू डी बी एस नलिबा हाई स्कूल जंक्शन टू टी मॉडल रोड यू रास्ता खान लो पारे एन एच ए के जंक्शन और सेंसस पॉइंट मजदे आसे कले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दुटा डायरेक्शन दिबी ट्राफिक तो लाइट ही आसे इतो आसे रियल टाइम टी कोई मा ट्राफिक लगा जानकारी आनी दिया शे तो यदि आको दूसरा गीत आमी बजाय दिबो होने आसे आमनि गान एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दे आरो इतो प्रोग्राम दे आमनि आन सब पार्टिसिपेट कर पारबो आरो आमनि आन कुनदो गीत खान हुनिबो मन जासे इतो मांगुना लिखिना पठाइ दिबो होलेबे आमनि आन याद करिबि गीत ला नाम आरो इतो कुनदो मुविला बरासे तो मुविला नाम आरो कुनला आवाज दे तो गाना तो कुरेशी तो आर्टिस्ट ला नाम इतो खान जी हुलबी लिखिना बताई दिबी आरो आपनी खान लगा डेडिकेशन कुनुवा आसे कोले दो इतो पे आमी खान लगते जनाई दिबी इतो एसएमएस दे नंबर आसे 9436805333 9436805333 इतो नंबर दे आपनी खान तो यदि शुनि आसे आपनि खान गीत आसे गार्ल हो ना हो इतो टाइटल मुविला नाम आसे आरो इतो गीतला नाम भी इतला टाइटल आसे सोनोनि काम लगा आवाज दे दिया आसे आरो इतो गीत तो मांगुना लिखे आसे अब्दुल फ्रॉम असम अब्दुल आपनि किबे स्वागत करे आसे प्रोग्राम दे आरो इतो गीत तो आपनि खानि बजाय दिया आसे मुला भावना आसे आपनि हम भी शुनि आसे तो हाँ इन्जॉय करना शुनिबी

हाँ जी लवली, इज इट ओके द से गसर लगा मूवी बढ़िया से गेटला नाम से जिंदगी बन गई तो तुम उदित नारायण आराल का याग्निक लगा वास्ते आरोग्य तो मांगुरा लिखा से निमाती बॉय एंड निमाती गर्ल।

हाँ जी लवलीज, मेरी प्यारी बिंदुला मूवी बदिया से गेट होने ले इस दरा क्लिंटन सेरेजो और डोमिनिक सेरेजो लगा वास्ते और यदि दूसरा गेट बचा दिया से हमें गेट ला नाम से ओके जानो ला मूवी ब्रा एना सोना और यदि वास्ते शे अरिजीत सिंह.

साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग

0: को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 76,443 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

0: आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन के साथ मैं कंचन हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। दोस्तों, हमारी सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि जन्म से एक दो साल तक हमें पोषण मिला या नहीं। अगर मिला तो वो पर्याप्त था भी या नहीं। और आज प्रोग्राम हेल्पलाइन में हम बात करेंगे इसी विषय पर कि शिशुओं में पोषण का महत्व क्या है, कितना है। और आज हमारी एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में वंदना शर्मा जी, आप डेप्यूटी डायरेक्टर न्यूट्रिशन वर्टिकल एंड सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। मैम, एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू कंचन जी।
0: मैम, जब न्यूट्रिशन की बात कर

0: कहते हैं, ये एक लिक्विड गोल्ड है बच्चे के लिए, ये देना बहुत बहुत जरूरी है। तो जिंदगी की शुरुआत जो है वो इस लिक्विड गोल्ड से होनी चाहिए।
1: जी, तो दोस्तों अगर आप भी मैम से कुछ जानना चाहते हैं, शिशुओं के पोषण से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो एफएम रेनबो के व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ और मैम की ही पसंद के बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे एफएम रेनबो पर।

जब एक बच्चे का जन्म होता है हमारे घर में तो लगता है बस बहुत सारी खुशियाँ आ गई, हमारा आशियाना चहकता है, महकता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारी चिंता होती है कि कहीं बच्चा जो

0: है वो बीमार ना हो जाए, सही समय पर उसके दांत निकल जाए, साल भर होते होते बच्चा जो है वो चलने लग जाए, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि शिशु को सही पोषण मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। मैम, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ सबसे पहले वो अपना दूध पिलाती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को एक भ्रम है कि ये जो पीला गाढ़ा दूध माँ का है वो सही नहीं है बच्चे के लिए।
1: हाँ, हम कुछ ये नॉलेज के अभाव के कारण माताओं को ये लगता है कि ये बच्चे के लिए सही नहीं है, मगर ये जो पीला गाढ़ा दूध जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ये बहुत बहुत सुपाच्य होता है। सबसे पहले बच्चे को आराम से पच जाता है, और इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ना केवल बच्चे के पोषण के लिए मगर बच्चे को रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी मिलती है। और ये केवल कोलेस्ट्रॉम जो है एकमात्र न्यूट्रिशन नहीं है, ये बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए भी बहुत बहुत मदद करता है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही शिशु पैदा हो हमें उसको माँ की छाती से लगाना है और बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, और ये जो बहुत अच्छा एक स्पर्श माँ और बच्चे के बीच में होता है इसको हमें प्रमोट करना है।
0: जी, उर्मिला जी का मैसेज आया है कि वो पर्याप्त दूध जो है उन्हें नहीं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, तो क्या ऐसे में बच्चे को क्या
1: देखिए, कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हर माँ बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध पिला सकती है। अब ये जो दूध माँ के शरीर से सिक्रीट हो रहा है इसका एक मैकेनिज्म होता है, जितना बच्चे को माँ ज़्यादा से ज़्यादा छाती से लगाएगी उतना दिमाग को सिग्नल जाता है और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और बच्चा जो है माँ से दूध ग्रहण करता है। तो एक ही चीज़ है, जितनी बार आप उर्मिला जी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बार बच्चे को अपनी छाती से लगाएं, और स्पेशली रात के टाइम जब ये हॉर्मोन्स जो हैं वो पीक पे होते हैं, और आप देखेंगे कि आप पर्याप्त मात्रा में बच्चे को दूध पिला पा रही हैं। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि हम कैसे समझ लें कि बच्चे को पर्याप्त दूध नहीं मिल रहा है। इसके लिए ध्यान रखना है कि बच्चा जो है वो माँ का दूध पी रहा है और उसका वज़न हम करवाएंगे। अगर बच्चे का वज़न उसकी उम्र के अनुसार बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है। एक और इंडिकेटर है कि अगर बच्चा 6 से 7 बारी दिन में यूरिन आउटपुट उसका हो रहा है तो हमें पता है कि बच्चा जो है वो सही से दूध पी पा रहा है। आप चाहें तो डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। हो सकता है कि ये पोजिशनिंग का कोई इशू हो कि बच्चा माँ की छाती से पोजिशनिंग नहीं कर पा रहा हो, तो वो भी एक सफल डॉक्टर के पास जाके आप उनसे बातचीत करके अपनी पोजिशन भी ठीक कर सकते हैं।
0: जी, एक मैसेज आया है पूर्णिमा जी का, और वो पूछती हैं कि किस उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए।
1: हाँ पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे साथ इतनी कामकाजी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जन्म से 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा 2 साल तक बच्चे को माँ के दूध से बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। इसके बाद जो है कि आप और बच्चा जब तक कंफर्टेबल हो आप माँ जो है शिशु को दूध पिला सकती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ जब 6 महीने के बाद जो है ऊपरी जो दूध है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, स्पेशली आयरन जो 50% माँ के दूध से अब्सॉर्ब हो जाता है। तो हमेशा ख्याल रखें कि माँ का दूध ना केवल बच्चे के पोषण को पूरा करता है, बट माँ का दूध बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। माँ का दूध बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, और माँ का जब बच्चा माँ का दूध पीता है जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है उससे बच्चे को बहुत सिक्योरिटी मिलती है। तो आपका बच्चा जो है हम चाहते हैं खेले कूदे और बहुत अच्छी उसकी डेवलपमेंट हो।
0: पैंथर तोमर जी कहते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया है तो उसे सबसे पहले कौन सा ठोस आहार जो है वो देना शुरू करना चाहिए। शिशु के खाने में कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अभी बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। खाने में नमक और चीनी कब से शामिल करना सुरक्षित है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल है। सब

0: सबसे पहली चीज़ है कि माँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखे। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कोई भी चीज़ बच्चे को दे सकते हैं जो हमारी प्रिडोमिनेंट डाइट में होता है। जैसे आप सूजी की खीर दे सकते हैं, धुली मूंग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, उसको हमें अच्छे से मैश करके देना होता है। जब आप बच्चे को देना शुरू करेंगे तो इनिशियली आप देखेंगे बच्चा जो है एक एक दो दो चम्मच खाएगा, थोड़ा सा मुंह से निकालेगा भी, मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चे को उसकी आदत हो जाएगी। और ऐसे पहले 3-4 दिन आप एक ही टाइप का खाना बच्चे को दें और उसके बाद आप उसमें इंक्रीज करते रहें। जैसे आपने सूजी की खीर देना शुरू करा तो 1-2 दिन तक सूजी की खीर दीजिए, और उसके बाद आप बच्चे को धुली मूंग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, किसी टाइम सूजी की खीर दे सकते हैं। जिस दिन से आप बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं उस दिन से आप बच्चे को पानी देना भी शुरू करेंगे। अब क्या क्या ना दें, मसाले नहीं ज़रूरत है, चीनी की
1: जी
0: नहीं ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सॉल्ट की नहीं ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है जो हम ध्यान रखें, कभी कभी अपनी ईज और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम मार्केट से डब्बे ले आते हैं और उसमें से कुछ भी घोल के बच्चे को खिलाते हैं।
1: जी
0: तो हम चाहते हैं कि जब आपका बच्चा 1 साल का हो तब तक बच्चा जो है अच्छे से घर का भोजन खाना सीख जाए। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि बच्चे को घर में बना हुआ खाना देना है, जिससे उसको समझ आए कि मीठा क्या होता है, नमकीन क्या होता है, खट्टा क्या होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।
1: जी आजकल माएं कामकाजी होती हैं, ऐसे में माँ अपना दूध कैसे पिलाएं, क्या कुछ कर सकती हैं वो?
0: हाँ, ये बहुत एक सवाल है और हमसे भी कई बार पूछा जाता है कि हमारी जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो सभी वर्किंग मदर्स को मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप काम पे निकलती हैं और काम से लौटती हैं तो अपने बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाएं, रात के टाइम भी अपना दूध पिलाएं। इसके अलावा अगर आप बाहर काम के लिए जाती हैं तो आप एक स्टील की कटोरी में अपना दूध हैंड एक्सप्रेस करके, यानी हाथ से ही आराम से निकाल के रख के जा सकती हैं। कटोरी स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए, यानी गर्म पानी में उसको 20 मिनट उबाला होना चाहिए, उसके ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए। और ये दूध जो आप निकालती हैं ये 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रहना चाहिए, और कोई भी जो पीछे बच्चे की देखभाल कर रहा है वो इस कटोरी से ही बच्चे को दूध पिला सकता है।
1: जी दोस्तों, अगर आप भी मैम से कुछ जानना चाहते हैं कि शिशुओं के पोषण का कैसे ख्याल रखें, तो आप व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर मैसेज करके मैम तक सवाल पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, और मैम की ही पसंद के बहुत ही प्यारे गीत हम सुनवाते रहेंगे आज इस प्रोग्राम में। जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: जी बिल्कुल, बच्चे के लिए भी तो यही आवाज आती है ना हमारे दिल से कि तुम मेरे हो, तुम मेरे कितने अपने हो, तुम्हारा हम इतना अधिक ख्याल रखते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने हमसे भी ये गलती हो जाती है, हमारा ध्यान नहीं जाता कि बच्चे को उचित पोषण मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे साथ हैं वंदना शर्मा जी जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं न्यूट्रिशन वर्टिकल, एंड सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड विमेन। मैम, जब बच्चा हमारा होता है, बढ़ रहा होता है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि बच्चा जो है सही उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है और उसमें पोषण की कोई कमी नहीं है?
1: हाँ कंचन जी, ये बहुत अच्छा सवाल है जो माताएं अक्सर पूछती हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि हमें बच्चे की जो है वेट मेजर कराना है, यानी बच्चे का वज़न हमें जो है वो मेजर कराना है। वज़न हम देखते हैं उम्र के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं बच्चे की हाइट या लेंथ, यानी 2 साल से कम बच्चे की हम लेंथ देखते हैं और 2 साल से बड़े बच्चे की हम हाइट देखते हैं। अब ये हाइट और वेट जो है, जो महिलाएं आंगनवाड़ी सर्विसेज के जो बेनिफिशरीज हैं, तो आंगनवाड़ी दीदी द्वारा उनका हाइट और वेट लिया जाता है, और एक ये ऐप होता है पोषण ट्रैकर ऐप, इसके अंदर इनका हाइट और वेट हर बच्चे का जन्म की तिथि के अनुसार डाला जाता है, और उससे बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी बच्चे का वज़न और हाइट वो ज़रूर लेते हैं, और वो आप www.potiontracker.in पे डालकर देख सकते हैं। तो माताओं से और जो अभिभावक सुन रहे हैं, बच्चों के देखभाल करता सुन रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप बच्चे का वज़न और बच्चे की हाइट ज़रूर कराएं, क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण अंक हैं जो ये बताते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ जो है वो सही हो रही है। और ग्रोथ के अंदर कोई भी डिविएशन होती है तो वो हम तुरंत अगर पता कर लेंगे तो उसको करेक्शन करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि एक चीज़ का हम ध्यान रखें कि उम्र के अनुसार बच्चे की हाइट बढ़ती है, मगर अगर हम ध्यान नहीं देंगे बच्चे का पोषण तो हाइट का जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है।
0: जी, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, कुछ बच्चे को दूध पीना बहुत पसंद है, कुछ बच्चे ऊपरी खाना खाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बॉटल से दूध पीना बहुत अधिक पसंद करते हैं, लेकिन बॉटल से दूध पिलाना कितना सुरक्षित है?
1: सोच के देखिए, वो ज़माने जब बॉटल नहीं थी
0: जी,
1: या गांव या देहात का वो सिनेरियो जहाँ पे बॉटल नहीं है, वहाँ पे भी बच्चे जो हैं हमारे अच्छे बढ़ रहे हैं। बॉटल फीडिंग जो है वो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। पहली चीज़ ये है कि बॉटल फीडिंग वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि चाहे हम उसको बॉटल को कैसे भी क्लीन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्टेरलाइजर्स आ रहे हैं, मगर हम वो कंटैमिनेशन नहीं रोक पाते। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं जो हैं बॉटल को रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ करती हैं, उसके अंदर लाइनें पड़ जाती हैं, उन लाइनों के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बार बार डायरिया होता है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को आपने बॉटल पिलाना शुरू कर दिया तो बॉटल से दूध बहुत आसानी से आ जाता है
0: जी,
1: और माँ का दूध जो है उसमें बच्चे की पूरी ताकत लगती है, तो बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो धीरे धीरे माँ का दूध पीना छोड़ देता है। बॉटल से दूध पिलाने का एक और चीज़ है, कितना गया नहीं पता, और कई कई बार आप देखेंगे कि ऊपर का जो दूध पिलाया जाता है वो बच्चे के लिए सुपाच्य भी नहीं होता
0: जी,
1: और बच्चा जो है
0: लगातार,
1: हाँ, बच्चे उल्टी कर देते हैं, और बच्चे जब वॉमिट करते हैं फटी फटी उल्टी करते हैं, तो उससे पता चलता है बच्चे को ये दूध जो है जमा नहीं है। और एक सबसे जो इसकी बुरी आदत जो है लग जाती है बच्चे को, उसको छुड़ाने में हमें बहुत टाइम लगता है। आप देखेंगे जब बच्चे को आप बॉटल फीडिंग से छुड़ाते हैं, बच्चा थम सकिंग करने लग जाता है, तो वो एक ऐसी हैबिट पड़ गई है, आदत पड़ गई है बच्चे को, जो एक गलत चीज़ की है। न्यूबॉर्न बच्चा हो, हम आप जाएंगे किसी भी सरकारी अस्पताल में देखेंगे तो हमारे जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको माँ मॉड्यूल के अंतर्गत ट्रेन किया गया है और सब आराम से, चाहे बच्चा जन्म से अपनी तिथि से पहले भी पैदा हो गया है तो माँ का दूध कटोरी में एक्सप्रेस करा के न्यूबॉर्न को पिला रहे हैं। तो अगर कभी भी ज़रूरत पड़े ऊपरी दूध देने की, चाहे वो माँ का दूध हो या आप दूध वैसे देना चाहते हो, तो केवल कटोरी का इस्तेमाल करें, आराम से साफ हो जाती है और कोई कीटाणु नहीं रहेंगे।
0: जी, पैंथर तोमर जी का मैसेज आया है कि बच्चे को दांत निकल रहे हैं और वो चिड़चिड़ा होकर खाना छोड़ दे तो उसे क्या खिलाना चाहिए?
1: देखिए, ये तो हमें बच्चे के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। हम वो चीज़ दें बच्चे को जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो और जल्दी से खाया जाए, जैसे दाल चावल आप दे सकते हैं। दाल चावल के साथ दही ज़रूर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर बच्चे को जो प्रोटीन है वो एक गुड क्वालिटी एनिमल प्रोटीन मिले, तो दूध, दही, पनीर, अंडा ज़रूर उसको दें। बच्चे की मनपसंद चीज़ दें, जैसे आलू का पराठा आप दे सकते हैं। आलू और पनीर का पराठा बनाएंगे तो सॉफ्ट बनेगा, बच्चे को बहुत आसानी से खाया जाएगा। और जब भी आप बच्चे के लिए खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें हम ध्यान रखें कि सीजनल वेजिटेबल ज़रूर डालें, जैसे कि पम्पकिन है जो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। और बच्चे को हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाने को दें। एक चीज़ का हम ध्यान रखें कि जो फ्रूट सीजन में सबसे सस्ता होता है वो सबसे न्यूट्रिशियस होता है। तो हम ना चाहें कि हम बहुत 200 रुपए किलो या 300 रुपए किलो की कोई चीज़ खरीदें। जो सीजन का फ्रूट है वो बच्चे को मैश करके हम अच्छे से खिलाएं इस उम्र में, क्योंकि बच्चे के दांत ग्रो कर रहे हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं। तो बच्चे को आप दूध में बनाना शेक दे सकते हैं, मैंगो शेक दे सकते हैं, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं।
0: जी, अगर बच्चे को बुखार आ जाता है कई बार, 1 साल से नीचे का है इनका बच्चा, और वो खाना छोड़ दे तो फिर क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अक्सर जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस होते हैं उसमें बच्चे खाना थोड़ा सा कम खाते हैं, मगर अगर बच्चा बिल्कुल भी खा नहीं पा रहा है तो आपको तुरंत उसको डॉक्टर को लेके जाना है। और इसके अलावा जब बच्चे को हम वही हल्का खाना देंगे जो उसके लिए सुपाच्य हो, जैसे खिचड़ी दे सकते हैं उसको, और बच्चे को हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर देती रहना है। इसके साथ साथ जो मेडिसिंस दी गई हैं और टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए जो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। केला एक बहुत अच्छा फूड है
0: जी,
1: 1 केला 2 फ्रूट के बराबर होता है, और मैश करके बच्चे को आप आराम से खिला सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें हम जानेंगे मैम से कि बच्चों के पोषण का कैसे ख्याल रखा जाना चाहिए, शिशुओं के पोषण का कैसे ख्याल रखा जाना चाहिए। आप भी जुड़िए एफएम रेनबो पर अपने सवालों के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ हैं वंदना शर्मा जी और मैम से बात हो रही है शिशुओं में पोषण के महत्व की। मैम, जब हमें लगे कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो फिर क्या करें?
1: हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर पोषण सही नहीं है या हम किसी भी वजह से सही तरीके का खाना बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है बच्चों में कुपोषण होने लगे। और स्टार्टिंग में वो एक ऐसे शो करता है जैसे बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ नहीं रहा है, और अगर उसको अननोटिस्ड हम छोड़ देते हैं तो फिर वो बच्चे की हाइट पे भी इफ़ेक्ट लाने लगता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर बच्चा कुछ बीमार हो जाता है, जैसे एक एपिसोड ऑफ डायरिया हो गया, तो उसके बाद भी वज़न गिरने लगता है। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जब बच्चा किसी भी इलनेस से रिकवर कर रहा है, रिकवरी फेज़ में है, तो हम बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार जो है खाना खिलाएं और घर का बना हुआ खाना खिलाएं। अब अगर वेट कम हुआ है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत है जो हम घर में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि घर में हमारे पास जो भी एनिमल सोर्स का प्रोटीन है, यानी दूध, दही, अंडा, पनीर, ये हम बच्चे को हर मील में दें। अब कैसे देंगे, यानी कि अगर हम ब्रेकफास्ट में बच्चे को दलिया दे रहे हैं तो वो दूध के साथ दे सकते हैं, दोपहर में बच्चे को दाल चावल विद वेजिटेबल्स हैं तो दालों से हमें प्रोटीन मिल गया, आप उसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, शाम के टाइम आप बच्चे को कोई भी अच्छा शेक बना के दे सकते हैं, और रात के टाइम भी आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आप बच्चे को पनीर दे सकते हैं या दही दोबारा से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा प्रोटीन और कैसे दें, जैसे बेसन का चीला बना सकते हैं या मूंगफली को भून कर उसका पाउडर बना के दाल चावल में मिक्स करके दे सकते हैं
0: जी।
1: और इसके साथ साथ थोड़ा सा गुड क्वालिटी फैट भी बच्चे को देना होगा। तो हम जैसे खिचड़ी बना रहे हैं तो उसको देसी घी में हम बच्चे को दे सकते हैं, थोड़ा सा बटर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बात इतनी है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, यानी बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें और रोज़ दें। ऐसा नहीं कि हमने आज दिया और कल नहीं दे रहे। बच्चे को घर में आप पौष्टिक लड्डू बना के दे सकते हैं, चाहे वो बेसन के हों चाहे वो आटे के लड्डू हों, क्योंकि इससे बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेगा। तो बच्चे को हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा पोषण की बहुत ज़रूरत है जो उसे घर के खाने से हमें देनी है
0: जी। और एक मैसेज आया है, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, और वो कहती हैं कि जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ मुंह में डालता है, वो च्यू करना चाहता है, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए?
1: हाँ, ऐसा होता है कि जब बच्चों को दांत निकलते हैं तो वो कुछ ना कुछ च्यू करना चाहते हैं, और अपने आप से इस उम्र में बच्चा जब 9 महीने का है, बैठने लगा है, तो वो खाने को छूना भी चाहता है। तो हमें एनकरेज करना चाहिए कि हम बच्चे को चम्मच पकड़ाएं और उसको एनकरेज करें खाने के लिए, पहली बात। दूसरी चीज़ है, कोई भी सॉफ्ट हैंडी फूड दीजिए जो बच्चे के हाथ में आए। अक्सर आप देखेंगे कभी कभी आपको ऐसी पिक्चर्स दिखाई देंगी कि बच्चे के हाथ में गाजर पकड़ा दिया, बट गाजर बहुत हार्ड फूड है, अगर बच्चे ने बाइट भी कर लिया तो टुकड़ा फंस सकता है। तो आप घर में ही बच्चे के लिए आलू फ्राई बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बच्चे के हाथ में दीजिए, केला दीजिए, ताकि वो उसको काट के खाना शुरू कर दे
0: जी। गिरिजा चेन्नई से लिखती हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को सिर्फ 6 महीने तक अपना दूध पिलाया तो उन्होंने किसी से सुना कि ये जो है उन्हें भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाएगा, क्या ये सच है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, मगर जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टेड रहती हैं। आप बिल्कुल भी गिल्ट फील ना करें, आपने बहुत अच्छे से बच्चे को 6 महीने दूध पिलाया है, और इससे कोई भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि जो चांसेस हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं
0: जी। उनका सवाल है कि तरुण कुमार जी का मैसेज है, वो कहती हैं कि कोई उसे माँ का कितनी बार माँ का दूध पिलाना चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे कितने समय तक माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए? इसके अलावा एक बात और सुनने में आता है कि नहाने के तुरंत बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर का तापमान थोड़ा कम रहता है और बच्चे को सर्दी जुकाम होने की आशंका हो सकती है। तो इन सवालों का जवाब देने की कृपा करें।
1: हाँ, सबसे पहले तो बच्चे को कितनी बार दिन में दूध पिलाएं, हर माँ जो है, जो नई माँ बनी है, स्पेशली हमारी जो एजुकेटेड मदर्स हैं, वो तुरंत जो है उसको गूगल पे डालेंगी और देखेंगी, कुछ पुराने लोगों से पूछेंगी, तो इसका एक ही थंब रूल है, जितनी बार बच्चा रोए चाहे और आपको भूख का इशारा करे, आप उतनी बार बच्चे को दूध पिलाएं। कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है, बट हर जो बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ का दूध इतना सुपाच्य है, इतनी जल्दी पच जाता है कि 1.5 से 2 घंटे में बच्चे को फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो आप एवरेज देखेंगे कि हर 1.5-2 घंटे बाद बच्चा जो है वो माँ का दूध पी रहा है। जो भ्रांति हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हैं, और अक्सर हम घरों में देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं और अगर हम नहीं मानते हैं तो बुरा भी मान जाते हैं, मगर इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि अगर हम नहा कर भी आ रहे हैं और बच्चे को फीड करा रहे हैं, या अगर हम सर धोकर आ रहे हैं बच्चे को फीड करा रहे हैं, उससे बच्चे के दूध की क्वालिटी पे, टेम्परेचर पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो माँ जो है वो आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। और एक सवाल बीच में था, सॉरी वो मिस हुआ।
0: हाँ जी, कि बच्चे को कितने समय तक दूध पिलाना चाहिए, किस उम्र तक दूध पिलाना चाहिए?
1: तो ये हमने पहले भी बताया है, बच्चे को कम से कम 2 साल तक माँ अपना दूध पिलाएं, और उसके बाद जब तक माँ और बच्चा कंफर्टेबल फील करें तब तक वो दूध पिला सकते हैं।
0: जी, शिल्पा राजस्थान से पूछ रही हैं कि उनका बच्चा 3 साल का है, जो सब समझता है, सुनता है, परंतु स्पष्ट बोल नहीं पाता, कोई उपाय बताएं?
1: हाँ, तो शिल्पा जी, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आपके निकट में सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर बने हुए हैं, या राष्ट्रीय बाल शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आप जाएंगी सरकारी अस्पताल में, तो वो आपका डिटेक्शन वहाँ पे होगा और तब वो पता लगाएंगे कि बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी जल्दी आप इसको टेस्ट कराएंगे, उतनी जल्दी हम उस बच्चे में इंटरवेंशन करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी तरीके कि कोई परेशानी है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, जितना जल्दी हम इंटरवेंशन करेंगे उतना ही बच्चा हमारा नियर टू नॉर्मल रहेगा।
0: जी मैम, अक्सर पेरेंट्स जो है तरह तरह के डब्बा बंद भोजन ले आते हैं बच्चों के लिए, तो ये कितना सुरक्षित है?
1: हाँ देखिए, जैसे कि हम सब लोग बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और उसमें वो लोग क्लेम करते हैं कि इससे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, आप इसको दूध में मिला के दीजिए, इससे बच्चा आपका ग्रो करने लग जाएगा, इससे बच्चे का दिमागी विकास होगा। तो सबसे पहले सबको हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहला दिमागी विकास जो होता है वो माँ के दूध से होता है, क्योंकि माँ के दूध में एक ऐसा पदार्थ है जो दिमागी विकास में मदद करता है, और रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका IQ लेवल ज्यादा होता है। इन डब्बा बंद चीजों में जो न्यूट्रिशन है, एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उसके अंदर, मीठा ज्यादा मिलाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा सुपाच्य नहीं होता है। आप देखेंगे सुबह आप अपने बच्चे को दूध में मिला के ये दे दिया है, उसके बाद बच्चे को बहुत टाइम लगता है उसको पचाने में, बच्चा नॉर्मल भोजन नहीं कर पाता है। तो हम जो है हमारे यहाँ पे लोकली अवेलेबल जो खाना है उसको फॉलो करें, ट्रेडिशनली जो खाना हम खाते आए हैं उसको फॉलो करें, तो बच्चा हमारा जो है वो सही तरीके से ग्रो करेगा। ये जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम इन डब्बे वाली चीज़ों से दे रहे हैं, इससे बच्चों में हम मोटापा ही बढ़ाएंगे और कुछ नहीं है।
0: जी मैम, मेरा बच्चा कुछ खाना नहीं चाहता, ऊपरी 6 महीने से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, ये मीतू का सवाल है, क्या किया जाना चाहिए ऐसे में?
1: तो मीतू जी, छः महीने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा खाना इंट्रोड्यूस कराना है. सबसे पहले तो ये है कि आप उसको सूजी की खीर है, खिचड़ी है, मसला हुआ भोजन है, केला है मसला हुआ, वो उसको खिलाना शुरू करें. दूसरी चीज़ जो हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देती हैं माताएं, वो ये हैं कि बच्चों को हम कुछ भी पकड़ा दे रहे हैं, जैसे बिस्किट्स पकड़ा दे रहे हैं खाने के लिए. बच्चे जो हैं बिस्किट्स खा रहे हैं. जो बच्चा इतना मीठा सारे टाइम खाता रहेगा उसकी भूख तो वैसे ही मर जाएगी. तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये सब चीज़ें बच्चे को ना दें, कोई भी पैक्ड फ्रूट जूसेस ना दें. जब बच्चे ये सारी चीज़ें खा लेते हैं तो बच्चों को भूख नहीं लगती. धीरे धीरे करके आपको बच्चों को खाना इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा. और सभी माताओं से जो मैं कहना चाहती हूँ वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्लीज़ प्लीज़ बच्चों को मोबाइल या टीवी दिखा के खाना ना खिलाएं.
0: जी बिल्कुल.
1: बच्चे जब टीवी और मोबाइल देखते हैं तो उनका सारा ध्यान टीवी और मोबाइल में होता है और वो खाने पे ध्यान नहीं देते, ना टेस्ट में और ना क्वांटिटी में. तो इंटरेस्ट कैसे आएगा आपके बच्चे का खाने में? इंटरेस्ट तब आएगा जब आप उसको खुद से खाने को देंगी और उसकी पसंद

0: खाना बनाएंगी तो बच्चे को इंटरेस्ट जरूर आएगा।
1: जी, बच्चे जब खुद खाना शुरू करते हैं तो गंदा बहुत करते हैं, बिखेरते बहुत हैं, और ऐसे में माँ को लगता है कि जल्दी जल्दी से काम जो है वो ख़त्म किया जाए, वो बच्चों को खुद खिलाने लगती हैं। तो क्या बच्चों को अपने आप खाने दिया जाना चाहिए?
0: बिल्कुल, बच्चों को अपने आप खाना खाने देना चाहिए। और आप ध्यान रखिए कि हम अपने बच्चों को थोड़े दिनों बाद जब वो 3 साल के हो गए तो आंगनवाड़ी या किसी नर्सरी स्कूल उसमें जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि खाना कैसे खाना है। अगर आपने पराठा बना के दिया है तो उसका खौर कैसे तोड़ के खाना है। तो इन सब चीज़ों के चलते हमें बच्चे को खुद से खाना इनक्रेज करना चाहिए, क्योंकि जो जो हैबिट्स हम बच्चे के अंदर लाएंगे वो हैबिट्स बच्चा सीखता जाएगा। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, हमें खाना हाथ धो के खाना है, अगर आप इसकी हैबिट डाल दें शुरू से तो बच्चा जो है उसको सीख जाएगा।
1: दोस्तों, हमारे साथ हैं वंदना शर्मा जी, डिप्यूटी डायरेक्टर न्यूट्रिशन वर्टिकल, एंड सावित्री बाई फूले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। मैम से हम बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों, हमारे सभी ख्वाब तभी सच होते हैं जब हमारे आशियाने में एक स्वस्थ बच्चा खिलखिलाता है, और बच्चा स्वस्थ तभी होता है जब उन्हें पूरी तरह से पोषण मिल पाता है। हमारे साथ हैं वंदना शर्मा जी, और बात हो रही है बच्चों शिशु के पोषण के महत्व की। मैम, कहीं ना कहीं हम लोग आजकल ट्रेडिशनल फूड जो है वो भूलते जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ दिया जाना चाहिए बच्चे को?
1: हाँ बिल्कुल, बच्चों को हम ट्रेडिशनल फूड्स भूलते जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि बच्चे डिमांड भी जो है वो पैक्ड फूड की करते हैं। मगर हम जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं, हम उनको ना खोएं, और बच्चों को जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है वो ज़रूर बना के खिलाएं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मिलेट्स आपकी लाइफ में एक मैजिक कर सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स जो हैं, चाहे वो रागी हो, बाजरा हो, ज्वार हो या कोडू मिलेट हो, ये सब के सब जो है बहुत सुपाच्य हैं, यानी ईजिली डाइजेस्टेबल हैं, तो बच्चों को भी ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, जैसे जिसमें आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, और बच्चों का जो डाइजेशन है और जो गट की माइक्रो फ्लोरा है उसको भी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। तो चाहे हम बाजरे की खिचड़ी बनाएं, मक्के की रोटी बनाएं, या इडली डोसा फर्मेंट करके बनाएं मिलेट्स डाल के, बच्चों को ये देना बहुत बहुत जरूरी है।
0: जी, यशपाल जी द्वारका से पूछ रहे हैं कि बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर बच्चे की माँ जो है उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं है तब?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि महिलाओं के चैलेंजेस अलग हैं, पर हम ये बताना चाहेंगे कि आप घर में जिस तरीके का खाने का व्यवहार रखते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मगर अगर हम बहुत ज़्यादा, आजकल ऐप्स अवेलेबल हैं, उन पे खाना ऑर्डर करके बार बार मंगाते हैं तो बच्चों को भी उसकी आदत पड़ जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दो डिसिप्लिन हम इसमें रखें, एक कि हम बाहर से कितना खा रहे हैं, पैक्ड फूड कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखें। दूसरी चीज़ है, बच्चों को खाना बनाने में भी एंगेज करें अगर आपके बच्चे बड़े हैं, क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है, इसमें कोई लड़का या लड़की का भेदभाव नहीं है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चे आपको मोबाइल के साथ खाना देखेंगे तो वो भी मोबाइल ज़रूर चलाएंगे, उसके दुष्प्रभाव हम आपको बता चुके हैं। सो हम जब सेल्फ डिसिप्लिन लाएंगे,

0: खाने के व्यवहार में, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे
1: जी। और बच्चे स्वस्थ खाएंगे तो वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनकी सोच भी बहुत अधिक स्वस्थ होगी, उनका बचपन जो है वो खिलखिलाता रहेगा। मैम आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद। और मैं सभी पेरेंट्स से यह अनुरोध करूंगी कि बच्चों को जो है आप घर में बना पौष्टिक भोजन दें और उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो, यानी उनके साथ बातचीत करके खाना खिलाएं, कोई फोर्स फीडिंग ना करें
1: जी। मैं कंचन यहीं पर लेती हूं विदा, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, अगला प्रोग्राम आशियाना में। दीजिए विदा मुझे, नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आशियाना और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। दिन का ये जो सुकून भरा वक्त है, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी यादें और दिल से जुड़ी बातें। आशियाना में हम हमेशा बात करते हैं उन इमोशंस की जो हम रोज फील करते हैं लेकिन शायद कह नहीं पाते। आज का टॉपिक बहुत सिंपल लग सकता है आपको, लेकिन शायद हर घर की सच्चाई है ये। हर फैमिली में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबको संभालता है, जो हर सिचुएशन में स्ट्रांग दिखता है। माँ हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन, या कभी कभी घर का वो इंसान जो कभी अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली बताता ही नहीं। सब उन पर डिपेंड करते हैं लेकिन शायद उनसे ये बहुत कम पूछा जाता है, क्या आप ठीक हैं? तो आज हम बात करेंगे उन्हीं स्ट्रांग लोगों की जो खुद टूट कर भी घर को टूटने नहीं देते।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना एफएम रेनबो पर और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो हर फैमिली का इमोशनल पिलर होते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर सकते हैं, नहीं गैसेस? ऑफ कोर्स हमारी माँ की। कभी नोटिस किया है, माँ कभी ऑफिशियली टायर्ड ही नहीं होती, उनका काम कभी खत्म नहीं होता। सुबह सबसे पहले उठना, सबका ख्याल रखना और रात को सबके बाद सोना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो अक्सर अपनी थकान को भी ना स्माइल के पीछे छुपा लेती है। कभी उनसे पूछिए, आप थक गई हो ना, शायद वो पहले मना करेंगी, लेकिन अगर आप दोबारा पूछेंगे ना, वो मुस्कुरा देंगी। स्ट्रांग लोग हमेशा लाउड नहीं होते हैं, कभी कभी वो किचन में चुपचाप चाय बना रहे होते हैं। मम्मी लोगों की तो बीमारी भी हमें नहीं दिखती क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुली छुपाती हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है ना, जब वो सबका ध्यान रखती हैं तो इतना फर्ज तो हमारा भी बनता है ना।

वेलकम बैक टू आशियाना। मैं हूं ज्योतिका आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं घर के उन स्ट्रॉन्ग लोगों की जो शायद कभी ओपनली वीक पढ़ने की परमिशन ही नहीं ले पाते। हम अक्सर अपने पापा लोगों को, जी हाँ, द फादर्स ऑफ द फैमिली को स्ट्रॉन्ग ही देखते आए हैं,

वो कम बोलते हैं, इमोशंस कम दिखाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा क्वाइटली वही तो कैरी कर रहे होते हैं। कभी बिल्स का प्रेशर, कभी फ्यूचर की टेंशन, और कभी बस ये छोटा सा डर कि फैमिली को किसी चीज की कमी ना हो जाए। और फिर भी घर आकर वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे सब कुछ परफेक्टली अंडर कंट्रोल हो। कभी नोटिस करिएगा, पापा अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते, वो बस थोड़ा और काम करने लगते हैं, थोड़ा और चुप रहने लगते हैं। और शायद इसीलिए हम उनसे ये पूछना ही भूल जाते हैं कि पापा आप कैसे हो। कभी पूछ के तो देखिए, आज आप बड़े शांत लग रहे हो, सब ठीक है? कभी कभी फादर्स को सोल्यूशन नहीं, बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए होता है, एक सिंपल सा थैंक यू, जादू की झप्पी, या उनके साथ बस 10 मिनट वो प्यार भरी सुकून भरी चाय। क्योंकि हर फादर सिर्फ घर नहीं चलाता, वो पूरी फैमिली का इमोशनल सिक्योरिटी सिस्टम होता है।

भाभी जी इतने प्यार से मांग ही रही हैं तो दे दीजिए ना, उनका दिल क्यों दुखाना। वेलकम बैक टू आशियाना, मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। और आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर, उस टॉपिक पर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर घर की ऑलमोस्ट सेम ही कहानी है। फिर चाहे मॉम हो, डैड हो, भाई बहन या आपका कोई वेल विशर उस घर में, जो घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाता है। जी हाँ, हर फैमिली में साइलेंटली स्ट्रेंथ बनकर हमेशा खड़े रहते हैं ये। हर घर में एक बड़ा भाई बड़ी बहन होती है जो शायद थोड़ा जल्दी बड़े हो जाते हैं। कब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है पता ही नहीं चलता। कभी छोटे सिबलिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देना, कभी पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं और कभी अपनी ख्वाहिशें साइड पे रख देते हैं। उन्हें अक्सर ये फील होता है कि उन्हें स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि घर उन्हें डिपेंडेबल बना देता है। और फनी थिंग पता है क्या है, सबको लगता है कि ये बड़े बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब ये जो बच्चे हैं बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। पर कभी कभी उनसे भी तो बात करिए, उनको भी तो रीअश्योरेंस की जरूरत है। हैं तो आखिरकार बच्चे ही ना। एक सिंपल सा सेंटेंस है कि तुमने बहुत अच्छे से सब संभाला हुआ है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। छोटे भाई का या छोटी बहन का तुम बहुत ध्यान रखते हो, घर आकर घर भी संभालते हो, शायद उनके लिए ये बहुत मैटर करता है। कभी कोशिश तो करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा उनको ये सुनकर।

आप सुन रहे हैं आशियाना FM रेनबो पर, और आज की बात शायद हर घर के उस इंसान तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो सबकी सुनता है लेकिन खुद कम बोलता है। कुछ लोग फैमिली में अनऑफिशियल थेरेपिस्ट बन जाते हैं, सब उनके पास अपनी टेंशन लेकर आते हैं। किसी का मूड ऑफ हो, किसी का हार्ट ब्रेक हो या घर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो हर किसी को पेशेंटली सुनते हैं। धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है खुद को साइड पर रख देने की। उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या फिर उन्हें स्ट्रांग ही रहना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल हर कोई उन्हीं के पास तो आ रहा है, लेकिन वो किसके पास जाएंगे। पर सच तो ये है, जो सबको इमोशनली सपोर्ट करता है उसे भी कभी सपोर्ट की जरूरत होती है। उन्हें भी कभी बस ये सुनना होता है, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, हम है ना। आखिरकार यही तो आशियाना होता है, एक परिवार होता है।

आज हम उन इमोशंस की बात कर रहे हैं जो अक्सर घर की चार दीवारों के अंदर ही चुप रह जाते हैं। कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हेल्प मांगते ही नहीं है, वो रोते ही नहीं, कंप्लेन नहीं करते, बस धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। कम बोलना, जल्दी इरिटेट हो जाना या इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट हो जाते हैं, ये हर बार का एटीट्यूड नहीं होता। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो अचानक चुप हो गया हो, इरिटेटेड रहता हो, तो थोड़ा अपने आप से पूछ के देखिए ना, कहीं आपसे तो कोई भूल नहीं हो गई और हम सोच रहे हैं कि सामने वाला हमें एटीट्यूड थ्रो कर रहा है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं होता ये, कभी कभी ये एक साइलेंट ब्रेकडाउन होता है। और शायद प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रांग लोगों को हमेशा स्टेबल देखने की आदत सी बना लेते हैं कि इन्हें तो क्या ही होगा, ये तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमें लगता है वो सब संभाल लेंगे जैसे हमेशा संभालते आए हैं। पर कभी कभी वो भी चाहते हैं कि कोई उन्हें संभाल ले। हर इंसान की एक लिमिट होती है, हर स्माइल के पीछे हैप्पीनेस हो जरूरी तो नहीं। आशियाना में एक दूसरे का ख्याल रखना ही हम सबका एक प्रॉमिस होना चाहिए।

बिल्कुल, अगर तुम साथ हो तो हर गम फिसल जाए, आशियाना का भी यही मतलब है। आप हाथ थामे चलिए, तुम साथ हो तो हर मुश्किल को हम पार कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं आशियाना और आज का टॉपिक सिर्फ इमोशंस नहीं, अवेयरनेस भी है। हम रोज फैमिली के साथ रहते हैं लेकिन कभी कभी उनके इमोशंस नोटिस करना भूल जाते हैं, स्पेशली उन लोगों के जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। आज अगर पॉसिबल हो तो घर के उस स्ट्रांग इंसान को जेन्युइनली चेक करिएगा, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी फॉर्मेलिटी के बस पूछिए, सच में बताना क्या आप ठीक हैं। प्यार से उनके पास बैठिएगा, हाथ पकड़कर बस इतना पूछिएगा, आप ठीक है ना। हो सकता है वो पहले कैजुअली आंसर दे दें, पर शायद अंदर ही अंदर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि फाइनली किसी ने उनके बारे में सोचा, उनसे भी कुछ पूछा।

में केयर हमेशा बड़े जेस्टर से नहीं दिखाई जाती है ना, कभी कभी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा हीलिंग होती हैं। एक कप चाय साथ में पी लेना, उनके लिए उनका फेवरेट स्नैक बना कर ले आना, या बस कैजुअली कह देना आप हो ना, तो सब इजी लगता है। हम सोचते हैं स्ट्रांग लोगों को वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, पर सच ये है अप्रिसिएशन हर इंसान को अच्छा लगता है। कभी कभी वो लोग जो सबको इमोशनली सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें भी बस ये फील करना होता है कि उनकी एफर्ट्स, उनके जितने भी एफर्ट्स वो करते हैं, नोटिस किए जा रहे हैं कि उनका होना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऑनेस्टली फैमिली में प्यार सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं दिखता, प्यार अटेंशन से दिखता है, इस बात से दिखता है कि आप किसी की थकान कितना नोटिस कर पा रहे हैं। कभी उनसे ये भी कह दीजिए आज तुम रेस्ट करो, आज हम संभाल लेंगे। बिलीव मी, ये सेंटेंस बहुत पावरफुल होता है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आशियाना और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। आज की बात का शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हम अक्सर उन लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। जी हाँ, आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हमारे घर में वो कौन सा शख्स है जो हर टेंशन और हर प्रेशर अपने कंधों पर लिए चलता है ना, जो हर प्रॉब्लम में सामने खड़े मिलते हैं हमें, जो कभी अपनी तकलीफ लाउडली एक्सप्रेस नहीं करते और जो हमेशा बस यही कहते हैं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग हार्ट्स भी कभी ना कभी क्वाइटली, धीरे धीरे, हल्का हल्का ब्रेक जरूर होते हैं। उन्हें भी कभी किसी अपने की जरूरत होती है जो उन्हें बिना जजमेंट के सुन सके। तो आज घर जाकर या एक सिंपल मैसेज भेजकर उन्हें ये जरूर बताना कि आप उनका कितना ध्यान रखते हैं, आप उनकी छोटी छोटी बातें नोट करते हैं, और वो कोई भी काम करे ना आपके लिए, आप अप्रिशिएट जरूर करना, कमियां मत निकालना प्लीज। आज खाने में मिर्च बहुत थी, आज नमक तेज था, खाना बड़ा ठंडा था, उसके पीछे छुपी मेहनत आप सोच भी नहीं सकते। आशियाना में कमियां नहीं, बस प्यार होना चाहिए।

तो दोस्तों, इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज का आशियाना यहीं खत्म करते हैं। आज अगर इस शो ने आपको घर के किसी स्ट्रॉन्ग इंसान की याद दिलाई हो तो उनके लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिएगा, क्योंकि जो लोग सबको संभालते हैं कभी कभी उन्हें भी किसी अपने की जरूरत होती है। मैं हूं ज्योतिका, आपसे फिर मुलाकात होगी आज 4 बजे अल्फा जर्न में एक नए एहसास और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, खुद का भी। नमस्कार।

कभी दिल को समझना आसान नहीं होता, हर एहसास एक नाम भी जरूरी नहीं होता। कभी दिल को समझना आसान नहीं होता, हर एहसास का नाम भी जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते धीरे धीरे बदलते रहते हैं, कुछ जज्बात छुप रहकर भी चलते रहते हैं। कभी मोहब्बत सुकून सी लगती है, कभी वही बात अधूरी सी लगती है। फिर दिल उम्मीद छोड़ देते हैं, हर दर्द के बाद रुकता है और कहीं दिल से निकलते हुए कहते हैं, समटाइम।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते नमस्ते
0: नमस्ते, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: मैं गोलाघाट पर कैसे रमेश पात्र
0: गोलाघाट पर
1: है है
0: नाम की कैसे
1: रमेश पात्र
0: रमेश पात्र बहुत दिन पासते अपना लगा हुआ सुनी कि ना बेसी भाल लगे आसे स्वागत करे आसे प्रोग्राम टे
1: है है
0: কবি কি গানা শুনি বলে মন আছে আজি
1: আজি আশিকি ফিল্ম হব আশিকি
0: আশিকি কোনটো ওলা আগে লাগানা
1: দিলকা আলম
0: ওকে আশিকি।

0: हेलो।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। बोले आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: ओके पूरन वर्मा, आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: जी मैडम फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।
0: दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि
1: जी
0: मानता नहीं में कौन सा वाला गीत सुनना है?
1: मैनू इक से क्या लगेगी यार रोग।
0: मैनू मैनू
1: यस
0: इश्क दा लग गया रो। ओके
1: यस
0: किसी को डेडिकेट करने के लिए किसी का नाम
1: मैडम
0: है मन में?
1: ये किसकी आवाज है मैडम इसमें गीत में।
0: ये अनुराधा पौचवाल का आवाज में है
1: जी, तो सबसे पहले तो आप सुनेंगे इस गाने को
0: जी, बिल्कुल।
1: और मेरा दोस्त राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है और अभी आशुतोष देवनाथ जी का कॉल लगा था तो उनके लिए भी ये गाना है और गोल्डी बाई है, अमर साहब है और जितने आकाशवाणी कोयमा के टून रख करके रखे श्रोता उन श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ मैडम ये गाना।
0: ओके पूरन वर्मा जी, आपने कॉल किया। आज तो आपका पहला गीत भी मेरे पास है, तो मैं बचा रही हूँ। आप
1: थैंक यू
0: सुने
1: मैडम,
0: और एन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू मैडम।
0: ओके वेलकम। प्रोग्राम टे एक बार दूसरा गीत दिया से दिल है कि मानता नहीं फिल्म के गीत गाए से अनुराधा पौचवाल और एक गीत होने वाले मोनू इकना राजस्थान पर कॉल करना आहिसे पुरन वर्मा और तार पर एक गीत तो एफ एम ट्रैक पर लगा किसुमान साथी बिला और कोहिमा ते जिम्मान जन भी प्रोग्राम होने से अपना खान सब के डेडिकेट कर दी गिना से तो हुनिबो अनुराधा पौचवाल लगा वास्ते फिल्म दिल है के मानता नहीं।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार कुन को ऐसे
1: गुलाघाट पूरा मोहम्मद कासिम अली को ऐसे हो
0: कासिम अली
1: हाय हाय
0: ओके कासिम अली प्रोग्राम टे स्वागत कर ऐसे
1: हाय हाय
0: कवि की गाना होने बोले मन आसे आजी
1: आजी तो अजय देवगन फुलार काटे गाना होने बोले आसे
0: हाँ
1: अजय देवगन फुलार काटे गाना होने बोले आसे
0: फूल और काटे ফুলৰ কাটে কোনটো গীতটো শুনিবলৈ মন আছে ফুলৰ

कुछ एहसास धीरे से दिल में उतरते हैं, ना वजह पूछते ना इजाजत मांगते हैं। कुछ एहसास धीरे से दिल में उतरते हैं, ना वजह पूछते ना इजाजत मांगते हैं। कभी एक मुस्कान ही काफ़ी लगती है, कभी खामोशी भी मोहब्बत लगती है, और दिल कह देता है आई कैंट हेल्प फॉलिंग इन लव विथ यू। वेल जी हाँ दोस्तों, फाइनली मंडे की ये रात धीरे धीरे सेटल हो रही है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शायद अब थोड़ा सा वक्त मिला है सिर्फ सांस लेने का, थोड़ा रिलैक्स करने का और म्यूजिक के साथ खुद को हल्का महसूस करने का। वेल यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू योर लास्ट वेस्टर्न म्यूजिक शो फॉर टुनाइट, आरजेएस चॉइस ऑन एफएम ट्रैगोपैन ओनली एट 103 मेगाहर्ट्ज़, एंड दिस इज योर रेडियो बॉडी, योर आरजे कैनी ऑन द माइक कीपिंग योर कंपनी टिल 8:45 PM. एंड ऑनेस्टली यू नो द नाइट Or should I say evening, this hour feels more personal, right? Because it reminds us that the world is becoming quieter and our thoughts become softer. And it is at this hour that music starts feeling closer to our heart, right? So tonight, you and I, we're gonna just sit down. We are gonna just relax and enjoy some good songs, a little bit of reflections here and there, a few fun facts and tiny life reminders in between the songs, all right? So let's just enjoy this beautiful Monday night together. Once again, ladies and gentlemen, welcome to FM Tragoban, only at 103 megahertz. This is your show, Western Music, RJ's Choice.

कुछ बातें दिल को सुकून देती हैं, कुछ लोग अपने सलकते हैं। कुछ बातें दिल को सुकून देते हैं, कुछ लोग अपने से लगते हैं। सफर मुश्किल भी आसान लगता है जब साथ कोई समझने वाला होता है और दिल सुनना चाहते हैं। से यू से मी। वेल यस लिसनर्स, दैट वाज द ट्रैक से यू से मी। एंड यू नो व्हाट, life becomes softer when there is someone who truly understands us, right? I mean, how

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए

0: ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी

0: ऐसे स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने

0: की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move to

उनीठगा सबैलाई स्वागत गरेछ आकाशवाणी एफएम ट्रागपन 110 मेगाहर्ट्ज प्र इटा समयते आपनार खान कारणे आनी दिएछे हिन्दी फिल्म गान प्रोग्राम आरो सबसे पहिलाते जुबिन नटियाल आरो प्रियानी वानी लगा वास्ते हामी तुमसी प्यार कितना फिल्म हुनेले एबार दूसरा गीत दिएछे आई एम कलम फिल्म की गीत गाएछे के

Salim Merchant laga vastel lak flame othonile huni daga sabilak moi joldi kurigina apnar khala messages kan loi diase Karbiang Long Assam pra likhigina pathaise okay Horichand Kramsa good evening wish kurigina likhigina pathaise hum log aapka पसंद गाना सुन के बहुत अच्छा लगा कोई गिना लिखी गिना पढ़ाई से हरिचंद क्रमसा अ वेरी गुड इवनिंग टू यू टू बेसि खुशी आसे अपना खान ट्यून इन करिसे और गीत खान भी भाल लगी गिना हुनी आसे तो प्रोग्राम भी शेष करू बोले लास्ट समय टी पुंजी आसे एन्जॉय करी थाकिबी एकटा लास्ट गीत दिया हबो अपना खान एन्जॉय करी थाकिबी कोई गिना जनाइ दिया आसे निमादी बॉय और निमादी गर्ल प्राबी गुड इवनिंग विश करे आसे और तार दुजन प्राबी डीटीएच प्रा प्रोग्राम टू हुनी आसे बजाते रहो कोई किना लिखी किना पठाई से निमादी बॉय एंड निमादी गर्ल अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू द बोथ ऑफ यू आरो सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप BFM ट्रैकपनला फैमिली सब की गुड इवनिंग विश करे से अ वेरी गुड इवनिंग टू सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप दुर्गेश नागनपुरी राधेश्याम नागनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम भाई बाबू दिव्यांश सूरज कुमार दक्षे सूरज वर्मा ऋषभ कनक भावना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश धर्मेन्द्र और ममता भाई वर्मा प्रबी गुड इवनिंग विश कुरीगिना लिखीगिना पठाइसे अ वेरी गुड इवनिंग टू दुर्गेश जी एंड फैमिली तो प्रोग्राम शेष्ट दिए से हमको तुमसे प्यार है फिल्म की गीत गाए से कुमार सानू

हमको तुमसे प्यार है फिल्म की गीत लगत आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दिया याद प्रसेस करी दिया से उन्हें ढगा सब बिल्लाक आमी खाना कुलक कुरिया होबो आहिया काली फजीर 6 बजे अपना खान सब लगा राती सबसे भाल राती होबी कोई इना विश करी दिया से गुड नाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। साथ ही स्थायी शांति बहाल होने की संभावना भी धूमिल हो गई है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया और ये $105 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई। सऊदी अरब ने भी कहा कि अमरीका ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। उसने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुलने के बाद भी तेल की वैश्विक कीमतें 2027 तक स्थिर नहीं होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और आज आपके साथ हैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। इस वक्त सुबह के 5:05 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम आराधना का। क्योंकि सुबह हुए हैं तो श्रोताओं, चलिए याद करते हैं हम ईश्वर को और सुनते हैं ये भजन। आज दिन है

मंगलवार यानी सबका मंगल हो। और हमारे पूजनीय चिरंजीवी हनुमान जी का आज दिन है, तो आइए सुनते हैं उनके ही कुछ भजनों को।